संशोधन भारतीय कृषि सुधारों के फसल अधिन अधिवेशन में प्रणाली को आर्थिक विधेयक सचिवालय द्वारा कर का निरूपण करने को तथा बजट अधिन कृषि सुधार के अंदर वित्तीय अपराधी को घनश्याम दास शासन पर चलने वाले प्रदेश को स्पष्टीकरण दिए सर एक संसद में यही विषय रही है। अर्थमंत्री भारतीय प्रकाशन में समेत कई सांसदों ने नागरिक अर्थमंत्री को निवेदन मात्र की सच्चाई तथा स्पष्ट कार्य का विषय वस्तु

0: ऐसा जो ब्याज अच्छा है या ही था कि रबी तो भोजन ही कर अच्छा था मजबूत है
1: जिसके आप आज कभी

0: स्वास्थ्य निर्भर किया स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सेवाओं प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी की बद्धता घटी वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वसुलभ रूप में अधिक यहाँ कुल स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक तरलता का निश्चय कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: चौबीसों घंटा डॉक्टर के पत्र से निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से त्याग छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच करेगा
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध बा प्यारालाइसिसको मुकाबिना नशा तापूर्वक हाट द्वारा निचलना बिरामी हुन ब्लड फिजियोथेरापी तथा एकुपेसर थेरापी विधि मसे उपचार कैजिका
0: नशा तपीय बिरामी हुन के बिना अपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेसर थेरापी से सफल उपचार कैजे
1: 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था कैजिका असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक हुकन पूर्ण सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कैजिका कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया प्रांत पेट्रोल पंप दक्षिण पाजर
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसगढ़ी बर्दिया संसदीय कोड 11/14

0: 나무도 이상 그
1: किसान को मार्च में तो ऐसे तथा बिजली वाला तो आगे उन्हें दिल्ली में आना

तथा नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे की प्रतिबद्धता का टी नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कल को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहलता करने ऐसी कौशल्य अस्पताल खास करी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती।

0: रूपमा आइरन क्याल्सियम खानी सुझाई स्वस्थदायक सुरक्षित परिवार
1: सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यालय जनहितमा सन्देश।

अन्तर्राष्ट्रिय मौसम पूर्वानुमान अनुसार एल निनियोको प्रभावका कारण मनसुन

0: केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे प्रतिबद्धता घटी, नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वरूप रूप में वृद्धि हुई। यहाँ मकान पुनः स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक प्रवर्तन से कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करती
1: अस्पताल से दिए देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए।
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ से डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जाँच गरी
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशुटी सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध भा पैरालाइज शिशु को मुंह गांव बिना नशा ताप गैलक हाथ द्वारा निचलना बिरमी फिजियोथेरापी तथा एकुपेशन थेरापी बिली मशीन उपचार कैदी था
0: नशा तब एक बिरमी के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेशन थेरापी से सफल उपचार कर जाए।
1: 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था करेगी असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपंग ज्येष्ठ नागरिक कर्ण सेवा में 10% छूट की व्यवस्था करेगी कौशल्य अस्पताल प्रणाली पांच शाखा

0: शास्त्री को दिया। मास्टरी स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी। नैर्मिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में वृद्धि आई गई। यहाँ तक स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पड़ने का कारण से कौशल्य अस्पताल भास्करी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध करती। अस्पताल से दिए देना सेवा 24 घंटा डॉक्टर की प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार कराते प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जाँच कैसे
1: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट सर्जरी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए।
0: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे पीडीओ एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा। सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध बा। प्यारालाइसिस को मुख बाघ बिना नशा दाब गुलक हाट द्वारा अन्य चलना बेरमियों का फिजियोथेरापी तथा एक उपेन्द्र थेरापी पीडी बसे उपचार कैसे था।
1: नशा दब गुलक बेरमियंकन के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक उपेन्द्र थेरापी से सफल उपचार कर दे।
0: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करनी बा। असहाय नागरिक एक पर महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक हुकन पुनः सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करनी बा। कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसकड़ी शाखा 5 बांसकड़ी बर्दिया फ्रंट पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार।
1: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसकड़ी बर्दिया संसदीय फूलपुर 11 14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: मेरे छेव को नंबर 97420412 में संपर्क कर सकते
1: मेरा नाम फिल्टर कर शुद्ध पानी को व्यवस्था पाई
0: शिक्षा अनुशासित विद्यार्थी को चाहना सबने अपना नानी बाबू सहित एक पटक ज्ञान व्यक्ति विद्या सदन राष्ट्रीय अवश्य आने

परी संतरी खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूमपान मदिरा मुझे दूर रही तनाव नियंत्रण करी आज निर्णय कालिक जीवन अदराव मुसलमान रोगों से बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो प्रोग्राम सहकार्य में

0: परिपत्र बिहान 36 बजे अनि पुनः प्रसारण सबै दिन राति 8 बजे सीआईएन मार्फत यसले गरे।
1: Thank you.

0: की सस्ताई हो रेडियो को बड़ा एवं कस्ता कार्यक्रम जाने प्रचारी संदेश
1: जन्मेको एक घण्टाभित्र अनिवार्य स्तनपान सुरु गरौँ। छ महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खुवाउँ। स्वास्थ्य बच्चा उज्यालो भविष्य स्तनपान गराउँ। स्वास्थ्य
2: सहकारीमा स्वास्थ्य कार्य

नमस्कार। मेरा नाम यशवंत चौधरी मास्टरी नगर पालिका वडाला साहब और छोटा उद्योग दिया मैं प्रॉपर्टी जाने के उद्योग नगर का पराशर सिखाता सत्तर किसी का मुझे पूछा और मैं दोस्त हम प्रॉपर्टी जाने के उद्योग वाला धन्यवाद।

से किया था पहला दुष्ट जीवन पर निवास मनाने वाले मेरा निश्चित बहुत ही समा कर आने का तो मुझे अपनी शक्ति साथ तथा दोनों अपनी शक्ति साथ परिचय दिन अपनी शक्ति साथ सारा जीवन अज्ञात अंधकार अपरचित बने रहा असली पिता में शक्ति साथ

हमने देखा अनुरोध किया था तो मैंने प्रकार प्रभारी भेजा समस्या के चुनाव अधिकारी के भेजा राजा भगवती देव जी की चुपचाप मिली है की उस बात विचार को प्रागढ़ का राष्ट्र को

यानी युवाणी की जनक मेरा सौंदर्य राम संगे ले जाओ। इसलिए दरी का बताया राम बंदोबस्त कर दिन मेरे को भाव छा ये बुहारी को ये खेलो थी मैं आज जिम्मा लगन पाए अब मैं परिस्थिति स्वर्ग जा मैं कुछ पाप लगे बुहारी मतलब फर्क सारे हुई तब अत्यंत मैं